0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: imagination is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: रहा है बोला
1: ओए पुली ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म
2: बोले ने कसूते फसाते
1: ओए भोले ओए टू कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो ओए भोले ओए टू
3: भला भाई

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: हाय, दिस इज इमरान हाशमी एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन रेडियो हाजी।
3: आजा प्यार की हो डील।
4: डील बोले तो
5: हार्ट हार्ट।
6: हाँ यार, सौदा सौदा।
5: ओहो,
3: दोनों डील करा सील।
4: टाइट, टाइट, वेरी टाइट।

0: You are listening.
1: Haji Haji Haji Haji Haji Haji Radio Haji
2: Radio Haji 1674 AM 24/7 Indian Radio Sydney ka apna Indian Radio Station
1: Radio Haji
0: Stay tuned.
3: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 1674 AM।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: लाओ जी तुहाडी नजर है बोला।
1: ओए बोली ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधु फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
2: बोले ने कसूते फसाते
1: ओए बोले ओए टू कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए बोले ओए टू।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: हां जी रेडियो
4: लाओ जी तुहाडी नजर है पोला।
0: ओए पोले ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
5: पोले ने कसूते फसाते
0: ओए भोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए भोले ओए 2
6: भोला भाई।
7: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
8: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
7: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
8: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
0: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नु होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
9: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट choice.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो।
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: लाओ जी तुहाडी नजर है पोला।
2: ओए पोले ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
5: पोले ने कसूते फसाते।
2: ओए पोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए पोले ओए 2
6: पोला भाई।
7: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है।
8: जुगाड़ नहीं ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा AAT अपील्स स्किल्ड वीजा PR US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
7: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
8: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नु होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
9: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट choice.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: बोला
1: ओए पोलियो दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधु फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म
2: भोले ने कसूते फसाते
1: ओए भोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुलियो ओए भोले ओए 2
0: बोला भाई
3: इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए ध्यान से इश्क कीजिए क्योंकि शादी भी हो सकती है सो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM हंसिए मस्त रहिए नाचते रहिए खुश रहिए।

आप सलाम नमस्कार जी रेडियो हां जी 1674 एम दे उते तुहाडा सारेयां दा स्वागत मैं गौतम कपिल वीरवार दा दिन अज 18 जून 2026 जे हुण जुड़े हो खबरां नहीं सुनदे तां वी तुहाडा स्वागत ते इक सलाह के सुन लिया करो बड़ी मेहनत दे नाल तैयार करके लियाने और ये खबरां तां तुहानू कित्थों मिलनियां ने पंजाबी दे विच आस्ट्रेलिया दे अंदर तुहानू आस्ट्रेलिया दीआं दुनिया जानदीआं खबरां दे दीदीआं ने हैं हुण जान कढ़नी है सानू ए पिछे कैद कटनी पै जानी है खबर पिछे अज गाने बड़े घैंट चलाने ने इस गल का वादा है गरंटी सारे पुराने सारे रीमिक्स

एक गाना जिदा मैं आज दे दिन सुनना चाहता सी ते जिदा इंतजार भी सी ते मैं चाहना है कि पहला वो गाना आप सुन लीए ते फिर मैं तुहानू आज दे प्रोग्राम दे बारे आज दे दिन दे बारे कुछ होर गल्लां भी दसूंगा। मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो ही सीगी। सुरां दा सिकंदर सरदूल सिकंदर।

0: गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: ओ अक्षरा ज्वेलर दी दूजी लोकेशन है रिवर स्टोन च।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर स्टोन विच भी तुहाडी सेवा विच।

कांट गेट इनफ यार, कमाल दी गल है। मतलब सिकंदर साहब, एक नुसरत साहब, सारा दिन सुनी चलो गल है कोई। मैं गया अल्लाह वास्ते हूँ एक दो गाने बीबिया दे चला दे जी, तो अल्लाह वास्ते मैडम नूरजहां, तो फिर पंजाब दी कोयल सुरेंद्र कौर करो इंजॉय, तो फिर मैनू दे दौ इजाजत, क्योंकि अगले प्रोग्राम दे विच एक देश पंजाब की गल कीचे दे विच तुहाडे नाल हुंदे आ हाजर। प्रीतम सिंह रूपाल भाजी दे नाल इंडिया तो गल करांगे एक वक्री जी।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
2: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
4: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
4: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
5: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
6: हाँ जी रेडियो

0: हाँ जी
1: हाँ भाई सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हाँ जी
0: हाँ जी
2: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
3: और जो हुकम मेरी सरकार
2: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
3: आहो जी आहो
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24

0: जी तोड़ी नजर है पोला।
1: ओए पोली ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधु फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
2: पोले ने कसूते फसाते
1: ओए पोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दिनाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भूलियो। ओए पोले ओए 2
3: पोला भाई।
4: This station is now the ultimate power in the universe.
5: Radio Haji 16748.

0: यार तू इतनी नीचे थी, आके पक्का भी हो गया? की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साला तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: बोला
1: ओए पोले ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म
2: बोले ने कसूते फसाते
1: ओए पोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो ओए पोले ओए 2

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्सटंच,
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ,

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: हाय, दिस इज इमरान हाशमी एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन रेडियो हाजी

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: लाओ जी तुहाडी नजर है बोला
2: ओए पोले ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म
3: भोले ने कसूते फसाते
2: ओए भोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नू पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो ओए भोले ओए 2

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
2: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: हाँ भाई सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी। हांजी
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
4: हाँ जी रेडियो।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਹਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन.com।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।
3: ओए असीन लौरिए हुन्ने आ, सियाने बंदे दी सानू समझ आवे या ना आवे, चलाक बंदे दी असी अख पढ़ लेने।

हाँ जी सुनील ग्रोवर, सुनील ग्रोवर, हाँ जी हाँ जी, 1674 ये नहीं है कत्तर बत्तर, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो सुनते रहो, हाँ जी AM।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: हाँ जी हाँ जी रेडियो हाँ जी रेडियो हाँ जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: खातिर नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा लव यू ऑल भावना को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनना होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना ना जी ना जी।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हेलो, मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हांजी 1674।

0: सेवक निर्मल रीत
1: ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम कह रंग
0: सेवक को प्रापालन हारा सेवक की राखे निरंकारा
1: सो सेवक जिस दया प्रभु तारे नानक सो सेवक सास सास सुमारे
0: अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर राखे
1: अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई
0: अपने सेवक की आपत राखे ताकि गत मित कोई न लाखे
1: प्रभु कह सेवक को न पहुंचे प्रभु कह सेवक ऊंचे ऊंचे
0: जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस गटाया
1: नीकी कीरी मैं कर राख है पसम करे लश्कर कोट लाख है
0: जिसका सास न काटते आप ता को राख दे कर हाथ
1: मानस जतन करत बो पात तिसके करत बिठे जात
0: मारे न राख है अबर न कोए सर्व जिया का राखा सोए
1: काहे सोच करे रे पानी जप नानक प्रभ अलख बडाणी
0: बारम बार बार प्रभ जपिए पी अमृत एहो मन तन तृपिए
1: नाम रतंजन गुरमुख पाया तिसकिच अबर नाही दिसताया
0: नाम तन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम कसंग
1: नाम रस जो जंत ताने मन तना मैं नाम समान
0: उठत बैठ सोबत नाम कहो नानक जन कै सदकाम
1: लो जाची वादन रात प्रभ अपने जन की नींदात
0: करह भगत आत्म कै चाय प्रभ अपने स्यो रह है समाए
1: जो हुआ हो वसु जाने प्रभ ने का हुकुम पछाने
0: तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कहे एक न जानो
1: आठ पैर पर बसे हजूर है कहो नानक से जन पूरे
0: मन मेरे तिन की ओट लेहे मन तन अपना तिन जन देहे
1: जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता
0: तिसकी शर्म सर्व सुख पावे तिसके दरसा पाप मिटावे
1: अवर सियान सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग
0: आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा
1: सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम अठ सतारा श्लोक
0: सत पुरख जन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसके संग सिख उदर है नानक हर गुण गाओ सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: सतगुरु सिखी करे प्रतपाल सेवक को गुरु सदा दयाल
0: सिख की गुर दुरमत मल हेरै गुरु बचन हर नाम उचर
1: सतगुर सिख कै बंधन काटे गुर का सिख बिकार ते हट है
0: सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख वड भागी हे
1: सतगुर सिख का हलत पलत सवार है नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमार है
0: गुर कै ग्रह सेवक जोर है गुर की आज्ञा मन में सह है
1: आपस को कर कछ ना जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे
0: मन बेच सतगुर कै पास ते सेवक के कार्य रास
1: सेवा करत होए नेकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी
0: अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले
1: का मन मान है सो सेवक परमेश्वर की गत जान
0: सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ
1: सर्व निधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग दाता
0: ब्रह्म है जन जन में पार ब्रह्म एक है आप नहीं कछ परम
1: सहर से अन पलया न जाइए नानक ऐसा गुरु भागी पाइए
0: सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत
1: संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे
0: सुनकर बचन करन आगाने मन संतोखा तुम पतियां ने
1: पूरा गुरु आख्यो जाका मंत्र अमृत दिष्ट पेख है संत
0: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भाव है तिस लय मिलाए
1: जे बाए कुस्तत अनेक सतपुरुष पूर्ण बबे
0: काहु बोल न पहुंचत प्राणी अगम अगोचर प्रभु निर्वाणी
1: निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई
0: अनक भक्त बंदन नित कर है चरण कमल हृदय स्मर है
1: सद बलिहारी सतगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने
0: एहो हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सो होए
1: उस पुरख का नाहीं कदे विनाश जाके मन पटे गुणतास
0: आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक
1: मोह माया के संग न लेप मन में रख है हर हर एक
0: अंधकार दीपक परगासे नानक पर मोह दुख तहते नासे
1: तबत माहे ठांड वरताई आनंद पया दुख नाठे पाई
0: जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेशे
1: पाउ चुका निर्भय होए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे
0: जिसका सातन कृपा धारी साध संग जप नाम मुरारी
1: चित पाई चूके भउ गवन सुन नानक हर हाजा सवन
0: निर्गुण आप सर गुण पी ओही कला धार जिन सगली मोही
1: अपने चित बाबा बनाए अपनी कीमते आपे
0: हर बिन दूजा नाही कोए सर्ब निरंतर एको सोए
1: पोत पोत रव्या रूप रंग पै प्रगा साध कै संग
0: रच रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलिहारी
1: सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ अठारह श्लोक
0: साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली छार हर हर नाम कमाव ना नानक हो तन सार सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार
0: अवरो पासा मीत बिसार हो चरण कमल रिद में उतार हो
1: करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हर रथ
0: एहो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत
1: एक आसरा को मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे
0: जिस तन को चार कुंट उठता वै सो तन हर सेवा ते पाव है
1: जिस को नित बाछ मीत सो सुख साधु संग परीत
0: जिस शोभा को करह भली करनी सा शोभा भज हर की शरणी
1: अनक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवख दलाए
0: सर्व निदान मह हर नाम निदान जप नानक दर गए परवान
1: मन पर खुद हर के नाए दैद स्तावत आवे ठाए
0: ताको बिगन लागे कोई जाके हृदय बसै हर सोए
1: कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ
0: भाव बिन सह पूर्ण होए आस भगत पाए आत्म प्रगास
1: सित कर जाए बसे अबनासी कहो नानक काटी जमफासी
0: तत विचार कह जन साचा जन्म रह सो काचो काचा
1: आवागुन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव
0: यों रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार
1: अनको पावन चूटन हारे सिमर शास्त्र वेद विचारे
0: हर की भगत करू मन लाए मन बंचत नानक फल पाए
1: संग न चालस तेरे धना तू क्या लपटावै मूर्ख मना
0: सुत मीत कुटांबर बनता इन ते कहो तुम कवन सनाथा
1: राज रंग माया विस्तार इन ते कहो कवन छुटकार
0: आस हस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पासारी
1: जिन दिए तस बुझे ना बिगाना नाम विसार नानक पछताना
0: गुर की मातू लेहे आने भगत बिना बहु डूबे स्याने
1: हर की पद करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत
0: चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाहे
1: आप जप हो अवरै नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो
0: सार भूत सत हर को नाओ सहज सुभाए नानक गुण गावो
1: गुण गावत त्रि उत्तर समैल बिन जाए हो मैं बिख फैल
0: होए अचिंत बसै सुख नाल सांस ग्रासर नाम संभाल
1: छाड़ सियान सगली मना सात संग पावे सजताना
0: हर पूंजी सांच करो व्यवहार इहां सुख दर गै जयकार
1: सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्त कलेख
0: एको जापे को सालाहे एक सिमर एको मन आहे
1: एक सके गुण गाओ अनंत मंतन जाप एक भगवंत
0: एको एक एक हर आप पूर्ण पूरहे ओ प्राव्याप
1: अनक विस्तार एक ते भय एक अराध पराचित गए
0: मंतन अंतर एक प्रव राता गुर प्रसाद नानक एक जाता
1: सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम अठ उन्नीस श्लोक
0: फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: जाचक जन जाचे प्रभदान कर कृपा दिवो हर नाम
0: साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी शरदा पूर
1: सदा सदा प्रभ की गुण गाओ सास सास प्रभ तुम्हें ते आओ
0: चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत
1: एक ओट एको आधार नानक मांगे ना प्रभ सार
0: प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए
1: जिन चख्या से जन तृप्ता ने पूर्ण पुरख नहीं डोला ने
0: सो भर भरे प्रेम रस रंग उपजै चाओ साध कै संग
1: परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास अंध निर्लाग
0: बड़ पागी जपया प्रसोए नानक नामर ते सुख होए
1: सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत ले
0: जन को प्रभ होए ओ दयाल सेवक कीनो सदा निहाल
1: बंधन काट मुकुत जन भया जन्म मरण दुख परम गया
0: पिछ पुनी शरदा सा पूरी रब रहया सत्संग हजूरी
1: जिसका सा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए
0: सो क्यों बिसरै जे काल न पानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै
1: सो क्यों बिसरै जिन सब कुछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया
0: सो क्यों बिसरै जे अगन मह राख है गुर प्रसाद को बिरला लाख है
1: सो क्यों बिसरै जे बिकते काड है जन्म जन्म का टूटा गाड है
0: गुरपुर है ताते है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया
1: साजन संत करो हो काम आन त्याग जपो हर नाम
0: सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो हो
1: पाए त्रिय संसार बिन भक्ति तन हो सी चार
0: सर्व कल्याण सुख निध नाम बूट जात पाए विश्राम
1: सगल दुख का हो तनाश नानक नाम जपो गुण तास
0: उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर यही सुहाओ
1: नेत्रो पे तरस होए मन बिकसै साधु चरण तो
0: भक्त जना कै मंतन रंग बिरला को पावे संग
1: एक बस दीजे कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया
0: ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्ब समाए
1: प्रभ क्षण दीन दयाल भगत विछल सदा कृपाल
0: नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल
1: आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार
0: जो जो जपै सो होए पुनीत भक्त पाए लावे मन ही
1: हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान
0: सर्व कुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए
1: अनक राज भोग वडे आई हर के नाम की कथा मन भाई
0: बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत
1: पलि सुकरनी शोभा धनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरु मंत
0: साध संग प्राप्त हो निवास सर्व सुख नानक प्रगास
1: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठवी श्लोक
0: सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका आपे ही फिर जाप सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: जब अकार कुछ न दृष्टि पापुन तब कहते होता
0: जब तारी आपन सुन समाध तब बैर विरोध के संग कमात
1: जब इसका वरन चिन्ह जापत तब हर सो को किसे व्याप्त
0: जब आपन आप अपार ब्रह्म तब हो कहां किस होवत परम
1: आपन खेलिया वर्ती जा नानक करने हार न दूजा
0: जब होवत प्राप्त केवल तानी तब बंद मुक्त कहो किसको गनी
1: जब एक हर गम अपार तब नरक सुर को कौन अवतार
0: जब निर्गुण प्राप्त सहज सुभाए तब शिव सख्त कहो हो कित ठाए।
1: जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डरे।
0: आपन चले तब करने हार नानक ठाकुर अगम पार।
1: अविनाशी सुख अपने आसन तय जन्म मरण को कहा विनाशन।
0: जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए।
1: जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा।
0: जब नाथ निरंजन अगोचर गादे तम कौन छुटे कौन बंधन बाधे।
1: आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा।
0: जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तूता।
1: जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान।
0: जह स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लागत कहो कीस।
1: जह जो स्वरूपी ज्योत संग समावे तह किसे भू कौन तृप्तावे।
0: कर्ण करावन करने हार नानक करते का नाही सुमार।
1: जा अपनी सुवा आपन संग बनाई तब कौन माए बा मित्र सुत भाई।
0: जह सर्व कला आपह परवीन तह वेदक तेव कहां कोचीन।
1: जब आपने आप उड़तारे तो सगन अपसगन कहां बिचारे।
0: जह आपन ऊंच आपन आप नीरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चीरा।
1: बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गजानो आप।
0: जह अछल अछेद अभेद समाया ऊहा किसह व्याप्त माया।
1: आपस को आपे आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश।
0: जह एक है एक एक भगवानता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता।
1: जह आपन आपा पतियारा तह कौन कथे कौन सुन न हारा।
0: बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा नानक आपस को आप है पहुंचा।
1: जह आप रचियो पर पंच आकार तेह गुण में कीनो विस्तार।
0: पाप पुन तह पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंचावत।
1: आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार।
0: दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखिया।
1: अपन खेल आप कर देखे खेल संकोच है तो नानक एक है।
0: जह अवगत भक्त है आप जह पसरे पासार संत प्रताप।
1: पाक का अपै धनी उनकी शोभा उन्हों बनी।
0: आप है कौत करे आनंद चोज आप है रस भोगन निर्जोग।
1: जिस भावे तुसी अपन नाय लावे जिस भावे तुस खेल खिलावे।
0: बेशुमार अथा अगंत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले।
1: सुख मनि सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम। 8:21 श्लोक।
0: जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार। सतनाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी।
1: आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार।
0: जा तिस भावे ता सृष्टो पाए अपने भाणे लय समाए।
1: तुम ते पिने किछ होए आपन सूत सब जगत परोए।
0: जाको प्रभु जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए।
1: सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सिष्ट का जेता।
0: जी जंत्र सबता कै हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ।
1: जिस राखे तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे।
0: तिस्ता जबर कहां को जाए सब सिरे एक निरंजन राए।
1: जी की जुग जाके सुभात अंतर बाहर जानो साथ।
0: गुण निदान बे अंत पार नानक दास दा बलिहार।
1: पूरन पूर रह दयाल सब ऊपर होवत कृपाल।
0: अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो ब्याप।
1: तत्पाले जी अनुभव पात जो जो रचियो सूत सहत्यार।
0: जिस पावे तिस लय मिलाए भक्त करे हर के गुण गाए।
1: मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक एक जानिया।
0: जन लागा हर एक नाए तिसकी आसन बिरथी जाए।
1: सेवक को सेवा बने आई हुक्म बूझ परम पद पाए।
0: इस ते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसिया निरंकार।
1: बंधन तोर पै निर्वैर अंदिन पूजे गुर के पैर।
0: यह लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आप है मेले।
1: साध संग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद।
0: राम नाम तत् करो हो विचार दुर्लभ देह का करो उदार।
1: अमृत वचन हर की गुण गावो प्राण तनन काए हे सुआओ।
0: आठ पहर प्रापी खुह नीरा मिटे अज्ञान बिन सहंदीरा।
1: सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छा नानक फल पावो।
0: हलत पलत दोय लिहो सवार राम नाम अंतर उरतार।
1: पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै ते साच परीखिया।
0: मनता नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते भौ जाए।
1: सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभै खेप तुम्हारी।
0: टीका टीक रखो मन माही नानक बहुर न आवै जाहे।
1: तिस्ते दूर कहा को जाए उबरे रख न हार ते आए।
0: निर्भौ जपै सगल भौ मिटै प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै।
1: जिस प्रभु रखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख।
0: चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार।
1: सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक ता कह कारज पूरा।
0: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उदरत सृष्ट।
1: चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप।
0: धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान।
1: जिस मन बसे सोत निहाल ताके निकट न आवत काल।
0: अमर भय अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया।
1: सुख मनि सुख अमृत पब नाम भल जना कै मन विश्राम। 8:22 श्लोक।
0: ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी।
1: संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु काला का मीठा।
0: सगल समिग्री एक स्कट माहे अनक रंग नाना दृष्टा है।
1: नौनद अमृत पब का नाम देही में इसका विश्राम।
0: सुन समाध अनहत नाद कह न जाई अचार ਸਾਜ ਬਿਸਮਾਦ
1: ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਖਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ
0: ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਹਿਆ ਭਗਵੰਤ
1: ਕਰਨ ਮਾਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ
0: ਬੰਤਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ
1: ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਤੈ ਦਿਸੈ ਸਮਾਹੇ
0: ਜਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਠਾਓ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਓ
1: ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖਤਰ ਮੈਂ ਏਕ
0: ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੈ ਆਪ ਅਡੂਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਡੋਲੈ
1: ਸਰਬ ਕਰਾ ਕਰ ਖੇਲੈ ਖੇਲ ਮੋਲ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਣੇ ਅਮੋਲ
0: ਸਰਬ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾ ਕੀ ਜੋ ਧਾਰ ਰਹੇ ਸਾਮੀ ਓਤ ਪੋਤ
1: ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
0: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਪੀਖਣ ਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ
1: ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨੇ ਸੋ ਬਚਨ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ
0: ਜਨ ਜਾ ਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਿਤ ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ
1: ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋ ਇਸ਼ਕ ਮਾਨੈ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੈ
0: ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਭੀ ਉਹੀ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਾ ਮੋਹੀ
1: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆ ਸਭ ਸਤ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ
0: ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾ ਕਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾ ਇਕ ਅੰਕਾਰ
1: ਅਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨੈ ਜਾਏ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲੈ ਮਿਲਾਏ
0: ਕਵਨ ਲਿਪਟ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਭਰਪੂਰ
1: ਅੰਤਰਗਾ ਜਿਸ ਆਪ ਜਨਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਚੰਨ ਆਪ ਬੁਝਾਏ
0: ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਵਰਤਾਰਾ ਸਰਬ ਨੈਨ ਆਪੇ ਖਨਹਾਰਾ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ ਆਪਨ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾ
0: ਆਵਨ ਜਾਨੇ ਖੇਲ ਬਨਾਇਆ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ
1: ਸਭ ਕੇ ਮਦਲ ਪੱਤੋ ਰਹਿ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹਿ
0: ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਸਮਾਏ
1: ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਨਾਹੀ ਬੁਰਾ ਉਰੇ ਕਹੋ ਕਿਨੇ ਕਿਛ ਕਰਾ
0: ਆਪ ਭਲਾ ਕਰ ਤੂੰ ਤਤਨੀ ਕੀ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ
1: ਆਪ ਸਾਜ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸਾਜ ਓਤ ਪੋਤ ਆਪਨ ਸੰਗਰਾਜ
0: ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਪਾਏ
1: ਇਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਾਨ
0: ਜੋ ਜਾਣੈ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
1: ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਰਿਹਾ ਭਗਵਾਨ
0: ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਰਾਇਆ
1: ਜਾ ਨਾਮਨ ਕਹੇ ਸੁਆਓ ਜਨ ਕਹਿ ਸੰਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ
0: ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ
1: ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਵ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਤੇਈ ਸਲੋਕ
0: ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸਤ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇ
0: ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ
1: ਆਸ ਨਿਤਿਆ ਗੋ ਤਰੰਗ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਦੂਰ ਮਨ ਮੰਗ
0: ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਆਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰੋ
1: ਹਰ ਤਨ ਕੀ ਭਰ ਲਿਓ ਭੰਡਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ
0: ਖੇਮ ਕੁਸ਼ਲ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦ
1: ਨਰਕ ਨਿਵਾਰ ਉਰਧਾਰੋ ਜੀਓ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਓ
0: ਚਿਤ ਚਿਤਵੋ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ ਏਕ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ
1: ਗੋਪਾਲ ਦਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ
0: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਇਹ ਆਧਾਰ
1: ਉੱਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ਅਮੋਲੀਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ
0: ਸੰਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋ ਤੋ ਉਧਾਰ ਆਪ ਤਰੈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਨਿਸਤਾਰ
1: ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸਫਲਤਾ ਕਾ ਸੰਗ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਰੰਗ
0: ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਗਾਜੈ
1: ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਮਹਤ ਕੇ ਮਾਥੇ ਨਾਨਕ ਉਦਰੈ ਤਿਨ ਕਹਿ ਸਾਥੇ
0: ਸ਼ਰਨ ਯੋਗ ਸੁਣ ਸ਼ਰਨੀ ਆਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ
1: ਮਿਟ ਗਏ ਬੈਰ ਭੈ ਸਵਰੇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਲੈਨ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ
1: ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਰਹਿਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਰਸ ਨਾ ਕਹਿਤੇ
0: ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ
0: ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਿਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਨਾਮ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ ਸੋ ਹੋਤ ਨਿਧਾਨ
1: ਸਰਬ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਲੋਏ
0: ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨ ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਵਨ ਜਾਨ
1: ਹਰ ਦਿਨ ਖਾਟ ਚਲੇ ਜਨ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ
0: ਖੇਮ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਧ ਨਵ ਨਿਧ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬ ਤਹਿ ਸਿੱਧ
1: ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਜੋਗ ਪਵ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਇਸ਼ਨਾਨ
0: ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾ ਸਭ ਕੈ ਮੱਧ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ
1: ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰ ਤਤ ਕਾ ਬੀਤਾ ਸਮਦਰਸੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
0: ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖ ਭਾਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਨੇ
1: ਇਹੋ ਨਿਧਾਨ ਜਪੈ ਮਨ ਕੋਏ ਸਭ ਜੁਗ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
0: ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਬਖਾਣੀ
1: ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ
0: ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਨ ਤੇ ਛੁਟੈ
1: ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਪਾਏ ਸਾਧ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ
0: ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੁਨੈ ਲਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ
1: ਮਰਨਤਾ ਕਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੈ ਦੁਲਭ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ
0: ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ਏਕ ਨਾਮ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ
1: ਦੁਖ ਰੋਗ ਬਿਨ ਸੇ ਪੈ ਪਰਮ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕੇ ਕਰਮ
0: ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖ ਮਨੀ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਚੌਵੀ ਸਲੋਕ

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। परमात्मा को आखिर हमने तलाश लिया, हमने ये जाना कि जिस तरह से मैं एक आत्मा, एक लाइट का एक पॉइंट हूं, उसी तरह से वो परमपिता भी एक लाइट, एक पावर हाउस है। मुझे अपना ही स्वरूप या मैं उसी का ही स्वरूप हूं, लेकिन मैं पुत्र, वो पिता है। आगे और जानते हैं, याद होगा कि पिछली कड़ी पे हमने छोड़ा था कि कहां है वो, कहां रहता है वो परमपिता। तो आइए इस सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: कहां है वो? हमने मिल तो लिए, हम मिल लिए उनसे, ये भी जान लिया कि वो कौन है, पहचानने की कोशिश की, पर वो रहते कहां है, कहां ढूंढे।
1: जब भी हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो स्वाभाविक रीति से नजर कहां जाती है? ऊपर की तरफ, है ना? बस अभी, कभी कहेंगे बस अभी थक गया, बस
0: कहां
1: अभी
0: हो तुम, कहां हो तुम, डेस्परेट होते हैं तो वी से वेयर आर यू,
1: वेयर आर यू। नाउ यू शुड थिंक दैट क्यों हमारी नजर ऊपर जाती है। हमें कोई कुछ भी नहीं पता कि ऊपर क्या है, ना हमें किसी ने बताया कि ऊपर कुछ है, लेकिन स्वाभाविक, दिस इज वाई वी से कि एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द सोल, तो स्वाभाविक रीति से नजर ऊपर जाती है, क्योंकि वही वो घर है जहां से हम आए हैं।
0: कहीं मेरी याद में रचा बसा है।
1: हाँ, क्योंकि हम उस घर से आए ना। सो अ मेमोरी इज देयर। अब किसी के अंदर वो मेमोरी क्लियर होगी और किसी के अंदर वो बिल्कुल फेंट है, लेकिन एक बार हम वहां से आए हैं तो उसकी मेमोरी
0: हमारे साथ है,
1: एब्सोल्युटली इनग्रेड है। ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला ही अब सब देखेगा, उसी को मतलब ऑटोमेटिकली नजर उसकी तरफ जाती है। तो जैसे ये जो दुनिया है जिसको हम कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड, दिस इज आवर फिजिकल वर्ल्ड, इट इज अ वर्ल्ड ऑफ मैटर, इट इज अ वर्ल्ड ऑफ साइंसेस, इट इज अ वर्ल्ड टाइम एंड स्पेस, यू नो ये लिमिटेड है, एवरीथिंग इज विद इन द पैरामीटर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। ये एक ऐसी दुनिया है जहां आवाज है, जहां मूवमेंट है, हलचल है, जहां रिलेशनशिप्स है, जहां नॉइज है, ये सब कुछ है। वो ये दुनिया है जिसको हम स्थूल वतन कहते हैं, कॉर्पोरियल वर्ल्ड या फिजिकल वर्ल्ड, जहां हम कॉर्प्स में है,
0: ह्यूमन बींग्स
1: है। हम बींग हैं लेकिन एक ह्यूमन बॉडी में है, तो हम कॉर्पोरियल वर्ल्ड या स्थूल वतन में हैं। लेकिन इस शरीर को लेने से पहले भी तो हम कहीं थे ना, यहां आकर हमने शरीर धारण किया, लेकिन इस शरीर को लेने से पहले हम कहां थे? तो परमात्मा आकर ही हमें उस घर का परिचय देते हैं। जैसे हमें अपना दिया, फिर अपना दिया परमात्मा ने, फिर उस घर का भी दिया कि इस दुनिया से पार, चांद सितारों की भी दुनिया से पार, बियॉन्ड ऑल दिस स्पेस दैट वी कैन सी, देयर इज अनदर वर्ल्ड, अ वर्ल्ड इन द सेंस इट इज जस्ट अ रीजन, एक्चुअली यू कैन नॉट कॉल इट, इट्स अ वर्ल्ड बट इट्स बेसिकली अ रीजन, इट इज एन एरिया विच इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, जहां सिर्फ प्रकाश है, इट्स जस्ट रेड लाइट, जस्ट गोल्डन रेड लाइट, एंड दैट इज द लैंड,
0: That is where we have,
1: yes, absolutely.
0: Okay.
1: And that is the land where we all stayed, जहां परमात्मा भी निवास करते हैं और जहां हर आत्मा भी निवास करती थी इस सृष्टि पर आने से पहले। It is a land of complete silence, absolute stillness, स्थिरता। क्यों स्थिरता नहीं? क्योंकि वहां कोई संकल्प नहीं चलेगा,
0: कोई thought नहीं,
1: ये noise तो नहीं होगी,
0: बॉडी नहीं,
1: ये तो बॉडी नहीं है, लेकिन जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं, या हम अकेले भी हैं, भले हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक नॉइज अंदर चलती है, थॉट्स। लेकिन वो जो धाम है जिसको हम परम धाम कहते हैं, क्योंकि वो परम, ऊंचे से ऊंचा धाम है, वो परमात्मा का रहने का भी धाम है, तो परम धाम कहते हैं, वहां कोई आवाज नहीं, संकल्पों की भी आवाज नहीं, इट्स अ थॉटलेस स्टेज, जहां आत्मा इज नॉट डूइंग एनीथिंग,
0: इट्स जस्ट देयर,
1: इट्स जस्ट देयर, अ बीइंग, जिसको हम कहते हैं ना ह्यूमन प्लस बीइंग। यहां आकर हम ह्यूमन डूइंग हो जाते हैं, आई एम डूइंग दिस, व्हाट एम आई बीइंग, देयर आई एम इन दैट जस्ट कॉन्शियंट बीइंग,
0: आई
1: एम जस्ट एब्सोल्युटली स्टिल। एक लाइट के अंदर एक लाइट सस्पेंडेड है, जैसे यू कैन सी इट्स लाइक स्टार, ये हम देख रहे हैं ना, इतने सारे स्टार्स, इट्स अ रीजन लाइक वास्ट एक्सपांस, नो टाइम नो स्पेस, एंड उसमें ये स्टार्स सस्पेंडेड है, अपने अपने टाइम पे फिर
0: नीचे उतरते
1: इस सृष्टि पर आते हैं। तो मैं आत्मा उस एब्सोल्यूट स्टिलनेस और एब्सोल्यूट साइलेंस, और इसीलिए हर आत्मा उस शांति को तलाशती है। और जब भी अशांत होते हैं तो हमें वो घर बहुत याद आता है, क्योंकि उस घर में कोई थॉट नहीं था, तो बिल्कुल साइलेंस था, बिल्कुल साइलेंस। एंड वहां परमात्मा भी रहता है, वो भी एक ज्योति बिंदु, एंड मैं आत्मा भी एक ज्योति बिंदु, तो उसको हम सोल वर्ल्ड कहते हैं। ये है फिजिकल वर्ल्ड और वो है सोल वर्ल्ड, आत्माओं का रहने का स्थान। अलग अलग नाम से उसको याद किया गया है, परम धाम, शांति धाम क्योंकि वहां शांति है, मुक्ति धाम क्योंकि हम इस शरीर के कर्म बंधन से मुक्त हैं, निर्वाण धाम वाणी से परे है। तो इन सब अलग अलग नामों से उसको याद किया गया है, वो उस परमात्मा का रहने का स्थान है और हम आत्माएं भी वहीं रहती। अब आप देखो, जब हम वहां थे तो ये स्मृति हमारे अंदर थी, परमात्मा भी एक ज्योति बिंदु, मैं आत्मा भी वैसी, ये मेरा घर, ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ रिकॉर्डेड है।
0: तो हर बार व्हेन आई टेक अनदर बॉडी, यू नो, व्हेन आई मूव आउट फ्रॉम दिस बॉडी एंड टेक अनदर बॉडी, आई इन बिटवीन गो देयर?
1: नहीं, वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे, लेकिन हम बीच में घर नहीं जाते हैं। इट्स लाइक वो घर है और ये हमारा कर्म क्षेत्र है, वर्ल्ड स्टेज, वहां से हम आए हैं कर्म करने के लिए, और काफी समय तक हम इस सृष्टि पर रहकर ही इस कर्म क्षेत्र में पाथ प्ले करते हैं। फिर एक समय आता है जब हम थोड़ी देर के लिए फिर से घर जाते हैं और फिर वापस आकर वो सृष्टि रंगमंच वापस स्टार्ट होता है।
0: Because we've come for a purpose.
1: Yeah, this is like our work. This is our workplace. वो हमारा घर है। तो एक बार आप घर से ऑफिस आते हो तो 8-10 घंटे के लिए आते हो ना। आप ये नहीं करोगे कि हर एक घंटे के बाद घर जाना है बीच में। तो आप 8-10 घंटे के लिए आते हो, शाम को 8 बजे के करीब आप थोड़ी देर के लिए घर जाते हो सिर्फ रेस्ट करने के लिए। लेकिन वो घर जाने से आप रिफ्रेश होके, रेस्ट होके, रिचार्ज होके वापस नेक्स्ट मॉर्निंग 8 बजे ऑफिस पहुंच जाते हो। तो सेम थिंग, ये हमारा वर्क एरिया है, वो हमारा घर है। थोड़ी देर के लिए जाएंगे रेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर ज्यादा समय इस वर्क प्लेस पे बिताते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कर्म करते करते करते हम बहुत थक गए हैं, तो अगर बीच बीच में हम कुछ क्षण निकाल के सिर्फ मन से, बुद्धि से, आत्मा निकल कर नहीं जाएगी, लेकिन मन और बुद्धि से जब उस घर में चले जाते हैं ना और उस पिता के पास चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ बैठे बैठे भी हम वो रिफ्रेशमेंट अनुभव कर सकते हैं। जैसे अब आप बैठो और 2 मिनट के लिए अपने घर को याद करो, जस्ट गो होम फ्रॉम हियर, गो होम एंड बी विद योर फैमिली, यू विल एक्चुअली फील कि आप जाकर वो एक्सपीरियंस करके वापस आ गए। सो इट विल गिव यू दैट फीलिंग
0: हैप्पीनेस, यू नो,
1: दैट्स
0: कंफर्ट लेवल,
1: दैट कंफर्ट, क्योंकि घर मतलब कंफर्ट, घर मतलब प्रोटेक्शन, घर मतलब वो पिता की सिक्योरिटी, तो वो घर मतलब वो प्योरिटी। तो इसलिए हम मेडिटेशन मतलब वो घर जाना, उस पिता के मिलना, उससे बातें करना, फिर वापस आ जाना। कैसे करना? बुद्धि से, वो फिर हम मेडिटेशन में सीखेंगे। तो ये है कि परम धाम कहाँ हम पिता को याद करें, क्योंकि जब तक हमें उसका घर नहीं पता होगा तब भी याद करना बहुत मुश्किल है कि वो कहाँ पे है, कहाँ हम उससे मिलने जाएं। तो हमने परमात्मा का रूप देखा, उसका नाम देखा कि हम उसको प्यार से शिव बाबा कहते हैं, फिर उसका घर देखा, लैंग्वेज हम किस भाषा में उससे कम्युनिकेट करें, थॉट्स, संकल्पों के आधार से कम्युनिकेट करते हैं, और संबंध हमारा उसके साथ, जो संबंध बनाना चाहे वो बना सकते हैं, वो भी हम मेडिटेशन में देखेंगे। हम परमात्मा के साथ कोई भी संबंध जोड़ सकते हैं।
0: एक्चुअली यू नो वी कैन, माय गॉड, इफ वी हैव हिम, सी लाइक कितनी राइटर्स ने कितनी बार ये कहेगी कि अगर मुझे भगवान मिल जाए, अगर मुझे खुदा मिल जाए तो मैं ये कहूंगा, मैं ये कहूंगा। सो नाउ लाइक इफ
1: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली और उसके गुणों को तो हम जानते हैं, तो किसी को भी याद करना होता है तो क्या क्या चाहिए? उसका नाम, उसका रूप, उसके गुण, उसका कर्तव्य। आपने कहा था ना, एक्ट ऑफ गॉड, कि हम सब यहाँ कर्म क्षेत्र पे हैं, तो उसका रोल क्या है, वो क्या कर रहा है? तो वो अपने परम धाम में बैठा है, वो अपने घर में बैठा है। पूरे हमारे इस ड्रामा के दौरान वो हमारे ड्रामा में इंटरफेयर नहीं करता है. इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल आप फिफ्थ फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है, आपके बच्चे ने ऊपर से नीचे झांक कर देखा कि सब बच्चे खेल रहे हैं, तो कहता है मुझे भी नीचे खेलने जाना है. आप कहते हो नीचे देख लेना, मतलब चोट लगेगी, दर्द होगा, नहीं मुझे नीचे खेलने जाना है, तो आप उसको भेज देते हो. दो तीन घंटा वो बहुत अच्छी तरह से खेलता है, लेकिन फिर उसको थक जाता है, चोट लगने लगती है, चीटिंग भी बहुत होती है, नीचे रोने भी वो लगता है. अब ये सब थोड़ी देर तो चलता रहता है, जब वो बहुत अति में पहुंच जाता है रोने के, कष्ट के,
2: तब आप पहुंच जाओ,
1: तब वो एक बार आपकी तरफ देखता है ऊपर सिर्फ, और सिर्फ एक बार बोलता है कि प्लीज मुझे आके यहाँ से ले जाओ. आप दौड़ते हुए नीचे जाएंगे, उसको उठाएंगे और ऊपर ले आएंगे, उसको हील करेंगे, सफाई करेंगे, चुप कराएंगे, सब कुछ करेंगे. नेक्स्ट डे
2: ही डू द सेम,
1: नेक्स्ट डे अगेन ही विल से कि आई वांट टू गो होम. सो दैट इज नो शिव बाबाज रोल इन दिस वर्ल्ड ड्रामा. वो हम नीचे आ जाते हैं खेलने के लिए, कुछ समय हम बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं, इट्स अ गुड गेम, बहुत मजा आता है सारा कुछ करते हुए, लेकिन बहुत समय हो गया ना करते करते, तो बीच में से दुख अशांति ये शुरू हो गई थी, चीटिंग भी शुरू हो गई, एक दूसरे के साथ रोना भी आया, हम बीच बीच में उसकी तरफ देखते भी गए, उसने कहा खेल ले थोड़ी देर और, लेकिन जब हमारी जो दुख थे वो बहुत अति में पहुंच जाते हैं, बिल्कुल हम जैसे कि बहुत जोर से चिल्ला पड़ते हैं कि बस अब हमारे से और सहन नहीं होगा, अब हमें बस मुक्ति चाहिए इससे, दैट इज द टाइम व्हेन ही हैज टू कम डाउन. और वो उस समय पर आ जाता है, नीचे आता है, एक एक बच्चे को फिर उठाता है, उसके सारे जो घाव है ना उस पे मरहम लगाता है.
2: आई थिंक नाउ द टाइम हैज कम, एक्चुअली आई फील लाइक क्राइंग, यू नो, बिकॉज टाइम नाउ,
1: यस, इट इज दैट टाइम, इट ही शुड नॉट कम, ही हैज ऑलरेडी कम. परमात्मा आ चुका है, वही तो ये कार्य कर रहा है, वही तो हमें बता रहा है. मेडिटेशन है क्या, उसको याद करते हैं प्यार से, वो हमारे एक एक घाव को भर देता है, एक एक चोट को हटा देता है, फिर हमें फिर ठीक करके घर ले जाएगा, और फिर थोड़े दिन के बाद हम कहेंगे हमें फिर नीचे आना है. तो कई लोग जैसे कहते हैं ना बस मुक्ति चाहिए या मोक्ष चाहिए, वी डोंट वॉन्ट टू कम इन टू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, बट इट डजेंट हैपन लाइक दैट, क्योंकि द नेचर ऑफ द सोल इज कर्म, यू नो, हम घर जाएंगे लेकिन थोड़ी देर के लिए, उसके बाद क्योंकि जस्ट इन दैट स्टेट ऑफ बीइंग ना, इट्स अ लिटिल बोरिंग एक्चुअली,
2: स्टिल है,
1: yes, still है. तो वो उसके जो सारी क्वालिटीज है वो उसको यूज नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो वो सिर्फ जब हम बॉडी में आते हैं हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं तो देर इज नो एक्सप्रेशन, देर इज नो एक्सपीरियंस, ना हम अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ना हम कुछ अनुभव कर सकते हैं, वी जस्ट स्टिल. लेकिन शिव बाबा में और हमारे में क्या अंतर है कि हम शरीर लेते हैं, शरीर लेने से धीरे धीरे धीरे धीरे हम अपनी अवेयरनेस को ही खो गए कि मैं कौन हूँ, जो हमने कहा ईगो आ गई, क्योंकि वी फॉरगॉट कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन वो शरीर नहीं लिया, तो वो उस शरीर से, उस साकारी दुनिया से न्यारा है, तो उसको कभी वो अपना ओरिजिनल स्वरूप भूला नहीं, और इसलिए उसकी क्वालिटीज में कभी
2: डिप्लीशन नहीं हुआ, कोई कमी नहीं,
1: और हमारे उसमें हो गई क्योंकि हमने शरीर लिया, हम उसकी अवेयरनेस भूल गए अपने, और फिर हम वर्च्यूज की बजाय वाइसेस की तरफ, विकारों की तरफ.
2: नो, बट एक्चुअली दैट एस्पेक्ट इज सो गुड, यू नो, दैट वी रियली नीड, वी आर ऑल क्राइंग, वी नीड हीलिंग.
1: एब्सोल्युटली, तो परमात्मा उसी टाइम पर आता है जब हम सब की कलेक्टिव आवाज इतनी ऊंची हो जाती है, हमारे दुख इतने बढ़ जाते हैं, त्राही त्राही मच जाती है, और सच में इस समय त्राही त्राही मची है कि पिता अब बच्चों का दुख नहीं और नहीं देख सकता, तो वही ड्रामा के अनुसार उसका भी रोल है नीचे आने का. क्या करना है, ह्यूमैनिटी और नेचर दोनों को वापस रिस्टोर कर देना है अपनी पीस और प्योरिटी की तरफ, और उसमें क्या करना है, उसको कोई मिरेकल नहीं करना है. लोग कहते हैं भगवान आया तो फिर कोई मिरेकल हो जाए, सारी दुनिया परिवर्तन हो जाए. इफ वी लुक एट द वर्ल्ड ऑन अ ग्लोबल लेवल, वट एवर द केओस इज देयर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द केओस इन द
2: माइंड,
1: इन द सोल. अगर सोल रिस्टोर हो जाए तो वर्ल्ड अपने आप रिस्टोर हो जाएगा. तो गॉड्स रोल is to restore that peace and harmony in the world. कि ये जो सारा chaos हो गया है इसको वापस harmony में लाना है, लेकिन उसके लिए वो करता क्या है, आत्मा की, he restores the peace and purity of the soul. जब soul अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी, प्रकृति
2: अपने
1: आप ठीक हो जाएगी,
2: बैलेंस
1: अपने आप बैलेंस. सो दैट्स हिज रोल. ही कम्स एट दिस टाइम, हील्स अस, रिस्टोर्स अस बैक टू दैट charged battery, nature automatically takes its course.
2: But you said he takes us back also.
1: Yeah, he takes us back, absolutely, because little rest, na? He takes us back home, we rest for little time, then come back.
2: So, but who goes? Like, whoever is in the dire need, actually, he can't take all of us, you know?
1: Yes.
2: You know, like, how does, actually, it's, you know, it's, if we look at it, you know, right now...
1: Iske liye har ek bachcha hai. Har atma... उसका बच्चा है, भले उसे पहचाने या नहीं पहचाने, लेकिन हर आत्मा इस टाइम जो सृष्टि पर है वो उस परमात्मा शिव बाबा का बच्चा है. तो उसके लिए तो सभी का दुख एक बराबर है, लेकिन वो ये चाहता है कि हर आत्मा पहचान ले और अपने दुखों से मुक्त हो जाए. और वो ही ये प्रयास चला है जो हम हमेशा कहते हैं कि इतने सारे सेंटर्स, 130 कंट्रीज, 8500 सेंटर्स, ये सब सेंटर्स खोलने की क्या आवश्यकता है. दिल्ली शहर में आज हम हैं, 150 सेवा केंद्र है. क्यों? ताकि विद इन 5 to 10 किलोमीटर्स ऑफ वेयर यू आर स्टेइंग यू गेट दैट हीलिंग. आप सेंटर पे आते हैं, आपको शिव बाबा का परिचय मिलता है, अपना मिलता है, एंड योर हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट्स एंड यू आर रेडी. नॉट अबाउट टेकिंग द जर्नी होम, लेकिन व्हाट अबाउट माय लाइफ नाउ. वो तो बाद में जो होना है वो अलग, लेकिन अभी की जीवन क्या, वो जीवन बहुत सुंदर बन जाती है.
2: आई कैन रियली अंडरस्टैंड, यू नो, लाइक इट्स, अगर हम शिव बाबा की बात करें, उस परिचय की बात करें, उस एहसास की बात करें, आई कैन फील इट, यू नो. बट आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू, एक मैं सवाल आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज के इस वक्त में सुख, खुशी, प्यार नहीं मिल रहा है, हम त्राही त्राही कर रहे हैं, हम मंदिरों में जा रहे हैं, वहां नहीं कुछ समझ में आ रहा, फिर हम उन रिचुअल्स में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इतना कन्फ्यूजन, उनसे कैसे बाहर निकल सकते इन द रियल.
1: मतलब एक है कि जो लोग समझ के कर रहे हैं, यू नो, पूरी अंडरस्टैंडिंग से, पूरे फेथ के साथ, लेकिन एक है जो सिर्फ डर के मारे कर रहे हैं, यू नो, कि मेरी नौकरी लग जाए तो उसके लिए ये इतने दिन उपवास, मेरी ये हो जाए तो उसके लिए ये पहनना है, उसके लिए ये हवन करना है, भाई आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, आप इतना दान कर दो, तो ये सारा फियर है. ये तो जैसे ज्ञान नहीं है तो हमें भय में, यू नो, अब हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मतलब सिर्फ कुछ करने से थोड़ी कष्ट दूर हो जाएगा. कष्ट तो मुझ आत्मा की कमजोरी है, अपने आप को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा. कमजोरी अंदर है, रिचुअल हम बाहर करते हैं, यू नो, हवन है, हवन करना है, योग अग्नि.
2: तुम भगवान से नहीं डरते इसलिए ये हो रहा है आपके साथ, यू नो. जनरली ये कहा जाता भगवान से डरो, सो हम भगवान से
1: डरो इसलिए कह देते हैं क्योंकि अच्छा कर्म करो, यू नो, जो हमने कहा भगवान कहते हैं कि हर जगह है, देख रहा है, लेकिन एक्चुअली जब हमें सच में उसका परिचय मिल जाता है कि वो हमारा, यू नो, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है जो फियर पर बेस्ड होता है, यू नो, दुनिया में भी, कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत डरा के चलते हैं, पर बच्चे के अंदर कभी वो प्यार नहीं, मतलब प्यार होता है लेकिन नो फियर है. तो व्हाट आई फील इज फियर एंड लव कैन नेवर बी टुगेदर, यू नो, देयर इज लव, देयर कैन नेवर बी फियर.
2: एक्चुअली बच्चा फिर हमेशा चाहेगा कि मैं उनकी आंखों में कोशिश करूं, हाँ, कि करता रहूं.
1: तो फिर वो अपना नेचुरल नहीं होता, वो डर में रहता है, डर की वजह से वो झूठ भी बोल देता है, उल्टा डर की वजह से ज्यादा गलत काम करता है, छुपाने की कोशिश करता है. अब उसी तरह परमात्मा के साथ एक है कि हम डर का रिलेशनशिप बनाकर रखें, पर वो इसलिए क्योंकि हम उसको जानते ही नहीं थे, लेकिन वो पिता है, गुस्सा तो वो कर ही नहीं सकता, वो तो प्यार का सागर है. ही लव्स मी, ही इज द ओनली वन हु लव्स मी अनकंडीशनली, यू नो, अनकंडीशनल लव जो हम दुनिया में.
2: गॉड कैन नेवर बी एंग्री, वंडरफुल. गुस्सा तो भगवान आपसे नाराज है, मतलब
1: भगवान कभी नाराज नहीं हो सकता.
2: See, लेकिन लुक एट इट, आई थिंक आई हैव हर्ड इट सो मेनी टाइम्स, यू नो, लाइक
1: भगवान नाराज नहीं हो सकता. सी दैट इज द ब्यूटी, उसके अंदर कोई विकार नहीं है, बिकॉज ही इज एवर प्योर. तो गुस्सा कैसे आएगा उसको, ये हमने जो बना दिए बहुत सारे, परमात्मा को गुस्सा आया तो विनाश हो गया, ये, यू नो, ये सारी चीजें. परमात्मा को अगर गुस्सा आ गया
2: तो परमात्मा कैसे रहा, बिकॉज ही इज टेलिंग अस नॉट टू बी एंग्री.
1: ही इज द ओशन ऑफ पीस, ही कैन नॉट हैव एंगर. वो पिता है, वो रहम दिल है, वो कल्याणकारी है, वो क्षमा का सागर है,
2: वो लविंग है, वो प्यार। हाँ,
1: सबसे पहली चीज तो प्यार है। इतना प्यार देता है, मतलब इवन द टर्म अनकंडीशनल लव विच आई यूज टू हियर पहले, यू नो, अनकंडीशनल लव, एंड आई फील नो ह्यूमन बींग कैन गिव अनकंडीशनल लव, इट्स नॉट पॉसिबल। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, नो ह्यूमन बींग कैन डू इट। आप कितना भी ट्राई कर लो, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हो जाती है, और जब वो नहीं मीट होती तो हर्ट होता है। वो हर्ट नहीं होता, वो हर्ट नहीं होता, वो बहुत प्यार देता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कहें फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, यू नो। जहाँ पेरेंट बहुत प्यार देता है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि और भी ज्यादा सही दिशा में चलने का दिल करता है, क्योंकि वो इतना प्यार देता है। तो आपको लगता है कि वो जो आपको शिक्षा दे रहा है, आप उसकी हर शिक्षा को बस फॉलो करते रहो, क्योंकि आपको ये पता है कि वो हर चीज आपके फायदे के लिए है। सो ही इज अ वेरी वेरी वेरी लविंग
2: ना, जो हमने बात उस वक्त की थी, आंख बंद करके विश्वास करने वाली बात,
1: आंख बंद करके, क्योंकि ये पता है ना कौन बोल रहा है। कौन बोल रहा है तो निश्चय है, इसको ब्लाइंड फेथ नहीं कहेंगे। कई लोग कहते हैं ये ब्लाइंड फेथ है, नहीं। जब अगर हमें एक इंसान पर भी निश्चय हो जाए, सपोज मुझे निश्चय है कि आप हमेशा मेरे अच्छे के लिए ही बोलोगे, तो मैं क्वेश्चन नहीं करूंगी आपको।
2: नहीं, पर हम अपने पेरेंट को क्वेश्चन कब करते हैं? आई डोंट नो एनीवन क्वेश्चन, एनी चाइल्ड क्वेश्चनिंग
1: नहीं। बट अभी क्या होता है, कई बार चिल्ड्रन हैव दिस थिंग विद देयर पेरेंट्स कि नहीं, ये पता नहीं, इनका अपना इसमें रीजन है, इनका ये मेरे पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे हैं, यू नो, इसमें मेरा फायदा नहीं है, मेरा फायदा डॉक्टर बनने में है, ये चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं। सो ये सब लिमिटेशंस, अ पेरेंट एक्चुअली अच्छा ही सोचता है। इवन मनुष्य आत्मा कभी बच्चे के लिए गलत नहीं सोचते, लेकिन ईगो की वजह से अपनी थिंकिंग, यू नो, अपने लिमिटेड बैरियर्स है, लेकिन वो तो साकारी नहीं है ना। वो साकारी लिमिटेशंस में बाउंडेड नहीं है, वो हमारी बड़ी पिक्चर देख सकता है। ही इज नॉट बाउंडेड बाय टाइम एंड स्पेस।
2: एंड अगेन, जो हम कर्म कर रहे हैं उसका जो लॉ ऑफ नेचर है या लॉ ऑफ कार्मिक डेथ,
1: वो हमें रिटर्न
2: तो करना ही,
1: लेकिन परमात्मा हमें सही कर्म करना सिखा देता है ना। जैसे आप माँ हैं तो आप अपने बच्चे को सही कर्म सिखाएंगे, अगर वो आपके कहे अनुसार चलते गए तो उसका रिटर्न क्या होगा? सही का सही है, तो रॉन्ग होने की कोई मार्जिन नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो हम कहेंगे परमात्मा से डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना,
2: बिकॉज
1: जस्ट टू ब्यूटिफुल, ही इज जस्ट टू ब्यूटिफुल, डोंट हैव टू गेट स्केर्ड ऑफ हिम, ही लव्स यू एंड यू नीड टू लव हिम बैक। And that's the relationship. Relationship with God is exchange of that purest love.
2: I love him, but then how do I tell him? You know, like how do I you know, like now you see. अभी तक आई थिंक हम जितने भी हम बातचीत करते आ रहे हैं, हमने खुद को भी पहचान लिया, और यू नो, लाइक वी वर नॉट इवन अवेयर, बट द मोमेंट द पिक्चर इज क्लियर, एक्चुअली आई कैन विजुलाइज, वी कैन ऑल विजुलाइज, यू नो, लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स क्लियर, इवन इफ वी हैड टेकन इट एज एन अजम्पशन।
1: यस,
2: शिव बाबा, क्योंकि जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे हम नहीं, चलिए नहीं मानते, अजम्पशन पे ही हमने माना कि शिव बाबा है, और उसके बाद हमने ये पूरा लॉजिक दे दे के हमारे सामने एक पिक्चर क्रिएट हो गई, विच इज आई थिंक सो ब्यूटिफुल, सो प्योर। नाउ हाउ डू आई गेट दैट लव, यू नो,
1: वो जो हम याद की यात्रा शुरू करेंगे ना, विच वी विल सी कि वो कैसे उसको याद करना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस रीगेन कर लीजिए कि वो मेरा पिता है, मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो मुझसे नाराज नहीं है, मुझे उसको खुश करने के लिए कुछ नहीं करना है। जो बहुत सारे हमने विस्तार किए है ना कि भगवान को खुश करने के लिए, यू नो,
2: इसी तरह से करो, ये करो, हाँ।
1: वो बाह्य चीजों से हमारे वैसे भी नहीं खुश होगा। वो क्या चाहता है हमसे? वो हमसे ये रिचुअल्स नहीं चाहता है, वो चाहता है हम जागे, हम ये जो अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं, हम जागे और अपनी शक्ति को फिर से पहचाने। ये फिजिकल जो है ही फिजिकल नहीं है, जो फिजिकल है ही नहीं, तो वो हमारी फिजिकल चीजों से क्या खुश होगा? क्या उसको मैं, उसको तो कुछ मिलता ही नहीं है उसमें से। सो दैट कैन नॉट प्लीज हिम एट ऑल। सो स्टॉप फियरिंग एंड स्टॉप डूइंग एनीथिंग इन द नेम ऑफ फियर ऑफ गॉड। यू नो, इवन इफ समबडी इज गाइडिंग यू टुवर्ड्स दोज थिंग्स, यूज योर इंटेलेक्ट, सोच कर कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। बिकॉज इस समय जब हम भय में होते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे भय को एक्सप्लोइट करते हैं। यू नो, अभी अगर आपको, जैसे आप किसी नए शहर में चले जाओ और कोई आपको देखे कि आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता, तो आपको एक्सप्लोइट करने के लिए 10 लोग मिल जाएंगे। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं कि हमें कोई ज्ञान नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो बस अज्ञान में ठोकरे खाते हैं, तो उसको एक्सप्लोइट करने के लिए भी बहुत कुछ है. तो वो फिर यू नो देन इट बिकम्स लाइक मनी मेकिंग एंड सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सप्लोइटेशन. तो उस एक्सप्लोइटेशन से हमें अपने आप को बचाना है और फेथ से चलना है. बिल्कुल.
2: तो ये कुछ बहुत सुंदर एक्चुअली कि कुछ बातें इतनी क्लियर हैं कि भगवान से हम डर नहीं सकते क्योंकि वो तो परम पिता है.
1: मतलब डरेंगे तो उल्टा अच्छा रिलेशन नहीं बनेगा.
2: हाँ, क्योंकि हमने एक रिश्ता बनाना है. रिश्ता बनाना है क्या, रिश्ता बना हुआ है, उस रिश्ते को याद करना है. एक्चुअली इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
1: ओम शांति.
2: ओम शांति. कितना सुंदर है हमारे पिता शिव बाबा. अगर हम मान भी लें, अज्यूम करते हैं कि हमने उन्हें माना, वो हमारे पिता हैं, परम पिता जिन्हें हम तलाश रहे थे. उनका परिचय इतना खूबसूरत है, कहीं ना कहीं दिल को तसल्ली है. मैं अपने आप कह सकती हूँ, हो सकता है आपके पास अभी भी कोई सवाल हो, कोई ऐसी बात हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई. आपका स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल द्वारा या फोन द्वारा संपर्क कर सकते हैं.
3: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निःशुल्क सिखाया जाता है. ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है. भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं. राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें.
2: रास्ते खुल चुके हैं, शिव बाबा अपना निमंत्रण दे चुके हैं. पहला कदम हमें बढ़ाना होगा. कैसे करेंगे हम उन्हें याद, अगली कड़ी में जानने की कोशिश करेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी. अब दीजिए इजाजत. नमस्कार.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: अक्षरा जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: लाओ जी तुहाडी नजर है बोला
1: ओए भोले ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म
2: भोले ने कसूते फसाते
1: ओए भोले ओए टू कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो ओए भोले ओए टू
3: भला भाई

0: Station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: हाँ भाई सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपने टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Imran Hashmi and you're listening to me on Radio Haji.

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।